0: whenever you want it, wherever you are, at the palm of your hands. Listen to FM 94.7 anywhere with the Fairchild Radio app. Available now for free on your device's player or app store. Connecting you to the community. Anytime, anywhere.
1: अल्बर्टा सहित कनाडा में खसरे का प्रकोप बढ़ रहा है। खसरा एक अत्यंत संक्रामक रोग है, लेकिन टीकाकरण

0: 16th May 2026, 12 p.m. to 6 p.m. at the Genesis Center, 7555 Falcon Ridge Boulevard, Northeast, Calgary. For more info, call Rajesh Angral 403-400-0203 or visit our website vesakhimela.ca.
1: ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਵਿਸਾਖੀ ਮੇਲਾ ਕੈਲਗਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ 13ਵਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਮੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਸ ਵਾਰੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਖੂਬ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ, ਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਗਿਫਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਪੋਂਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ $1,000 ਦੇ ਗਿਫਟ ਪ੍ਰਾਈਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਕੁਛ ਇੱਕ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਰ ਬਾਰ। ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਬਟ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਚੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਜੀ।
2: जहाजों पर किए हमले, संघर्ष विराम पर मंडराने लगे खतरे के बादल, जानेंगे क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलवाने की कोशिश में फिर शुरू हो जाएगी जंग। ईरान के साथ अमेरिका और इसराइल की जंग की वजह से दुनिया को करना पड़ रहा है एनर्जी की कमी का सामना, ऐसे में एनर्जी सिक्योरिटी के लिए किस प्लान पर काम करने लगे हैं देश, जानेंगे स्पेशल रिपोर्ट में। अटलांटिक ओशन में एक क्रूज शिप में सफर कर रहे दो लोगों को हुआ हंटा वायरस का इन्फेक्शन कंफर्म, शिप पर तीन लोगों की गई जान, सुरक्षा के लिए उठाए जा रहे कौन से कदम, दिखाएंगे स्पेशल रिपोर्ट। और इस वक्त शिकार की वजह से विलुप्त होने की कगार पर खड़े माउंटेन गोरिल्लास की बढ़ रही है तादाद, देखेंगे किन कोशिशों से बदली तस्वीर। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं सारिका सिंह। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है, इसे खुलवाने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच गोलाबारी हो रही है और इससे ईरान और अमेरिका के बीच हुए संघर्ष विराम पर खतरे के बादल भी मंडराने लगे हैं। अमेरिकी सेना का दावा है कि उसने 7 छोटी ईरानी नावों को कल तबाह कर दिया और ईरानी क्रूज मिसाइलों और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलवाने में अमेरिका की नेवी एक नए सिरे से कोशिश कर रही है और ईरान इसे कामयाब नहीं होने देना चाहता, इसीलिए वो हमले कर रहा है। लेकिन ईरानी संसद के स्पीकर ने अमेरिका पर संघर्ष विराम के उल्लंघन का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि अभी तो ईरान ने शुरुआत ही की है। मोहम्मद गालिबाफ पिछले महीने अमेरिका के साथ होने वाली बातचीत में प्रमुख वार्ताकार थे। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने अमेरिकी जहाजों पर हमले किए तो उसे इस दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाएगा। और अब एक बार नजर डालते हैं खाड़ी में दूसरी जगहों पर। कल यानी सोमवार को यूएई ने अपने यहां की सबसे बड़ी ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी जो फुजैरा पोर्ट में है उसमें लगी आग के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया है। अप्रैल के महीने की शुरुआत में ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष

0: विराम पर सहमति बनी थी उसके बाद से यूएई के फुजैरा पोर्ट पर हुआ ये पहला हमला है देखिए बीबीसी संवाददाता डेविड विलिस की रिपोर्ट
1: यूएई के सबसे बड़े ऑयल पोर्ट से धुआं उठ रहा है पिछले महीने हुए सीज फायर के बाद यूएई पर यह पहला हमला है और आने वाले दिनों के लिए ये अच्छे संकेत नहीं लग रहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरानी ब्लॉकेट को हटाने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप प्रोजेक्ट फ्रीडम चला रहे हैं और जोर देकर कह रहे हैं कि सब कुछ प्लान के तहत चल रहा है
2: ये बहुत अच्छे से चल रहा है उनके पास नेवी नहीं है एयरफोर्स भी नहीं है उनके पास एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम और रेडार भी नहीं है उनके पास कुछ नहीं है उनके पास तो कोई नेता ही नहीं है
1: स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लगातार बंद रहने से पूरी दुनिया में पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं अमेरिका में चुनाव कुछ महीने ही दूर हैं और इस गतिरोध के बीच राष्ट्रपति ट्रंप की निराशा बढ़ती जा रही है प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत खाड़ी से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए अमेरिकी क्रूज मिसाइलें डिस्ट्रॉयर शिप हेलीकॉप्टर ड्रोन और लड़ाकू विमान तैनात किए जा रहे हैं इस कदम से ईरान पहले ही नाराज हो चुका है ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने इस पर कहा हॉर्मुज के घटनाक्रम से साफ होता है कि राजनीतिक संकट का सेना की मदद से कोई हल नहीं निकल सकता प्रोजेक्ट फ्रीडम दरअसल प्रोजेक्ट डेडलॉक है ईरान के सरकारी टीवी ने सोमवार को कहा कि ईरानी नेवी ने अमेरिकी जहाजों पर वार्निंग शॉट्स फायर किए लेकिन अमेरिकी सरकार ने शुरू में कहा कि उनके शिप्स पर ऐसा कोई हमला नहीं हुआ अमेरिका का इस पर कहना है कि उसके दो गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर और दो मर्चेंट शिप्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने में सफल रहे हैं शिपिंग कंपनी मर्क्स ने बीबीसी को बताया कि अमेरिका में रजिस्टर्ड जहाज अलायंस फेयरफैक्स सेना की सुरक्षा के दम पर निकल पाया है मगर सैकड़ों जहाज अब भी फंसे हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने इस ऑपरेशन को मानवीय पहल बताते हुए उस इलाके में स्वतंत्रता बहाल करने के लिए उठाया गया कदम बताया लेकिन इस सबसे फिर से जंग शुरू होने का खतरा पैदा हो गया है बीबीसी संवाददाता डेविड फिलिस की रिपोर्ट
0: यूएई में फुजैरा पोर्ट पर हुए हमले में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये हमले स्वीकार नहीं है तो यूएई ईरान पोर्ट के लिए आखिरकार टारगेट क्यों है बता रहे हैं बीबीसी संवाददाता जेरेमी बोवेन
3: यूएई अपने पड़ोसी देशों के मुकाबले अमेरिका और इसराइल का सबसे बड़ा हिमायती है इसराइल तो उन्हें अब तक एक रणनीतिक सहयोगी मानता है और इसका सीधा मतलब ये हुआ कि वो ईरान की नजरों में आएगा लेकिन इस हमले के टारगेट फुजैरा ऑयल टर्मिनल पर नजर डालते हैं ये यूएई के तट का छोटा सा हिस्सा है जो खाड़ी में नहीं पड़ता ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के दूसरी तरफ है ओमान की खाड़ी के सामने और यहाँ से यूएई अपना तेल और दूसरे प्रोडक्ट्स बाकी देशों को भेजता है एक पाइपलाइन जो वहां जाती है वहां बड़ी स्टोरेज फैसिलिटीज है और उन पर हमले हो रहे हैं और दबाव बढ़ रहा है और मुझे लगता है कि ये ईरान की तरफ से एक इशारा है कि वो जंग बढ़ाने के लिए तैयार है वो फिर से जंग चाहता है और ये जंग किस रफ्तार से बढ़ानी है इसका फैसला भी ईरान करेगा क्योंकि वो ईरानी जानते हैं कि एक अस्थाई संघर्ष विराम के बाद जंग ही होनी है
0: लेकिन क्या इन हमलों से ईरान और अमेरिका के बीच जारी संघर्ष विराम टूट सकता है अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा कि अभी सीज फायर खत्म नहीं हुआ है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अमेरिका लड़ना नहीं चाहता लेकिन ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक नहीं कर सकता उधर अमेरिका और ईरान के बीच मेडिएटर की भूमिका निभा रहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि वो पिछली रात यूएई के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुए मिसाइल और ड्रोन हमले की सख्त निंदा करते हैं उन्होंने कहा कि यह बेहद जरूरी है कि सीज़फ़ायर बना रहे और उसका सम्मान किया जाए ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाने के लिए जरूरी कूटनीतिक बातचीत के लिए जगह बन सके उधर लेबनान में इजरायली सेना और हिजबुल्ला के बीच हमले जारी हैं लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि कल लेबनान में हुए इजरायली हमलों में 17 लोगों की जान गई है गुरुवार से हुए हमलों में अब तक 110 लोग मारे जा चुके हैं इसराइल ने दावा किया है कि उसके इसी अंतराल में उसके 17 सैनिकों की भी मौत हुई है और उसने हिजबुल्ला पर सैकड़ों रॉकेट्स और ड्रोन्स दागने का भी आरोप लगाया है ईरान के साथ चली अमेरिका और इसराइल की जंग ने पूरी दुनिया को यह बता दिया है कि एनर्जी सप्लाई कितना संवेदनशील मुद्दा है इस जंग की वजह से एनर्जी सप्लाई का मुद्दा वैश्विक राजनीति में सबसे अहम मुद्दा बन गया इससे कई देशों को भी अपनी ऊर्जा सुरक्षा के बारे में सोचने का मौका मिला है ताकि वो ये सोच सके कि इसे कैसे मजबूत किया जाए तो अगर किसी देश के पास तेल या गैस जैसी ऊर्जा है तो कैसे उसकी ताकत बढ़ती है और इससे आपके देश का राजनीतिक प्रभाव कैसे बढ़ता है?

0: देखिए बीबीसी संवाददाता क्रिस सिपथॉप की रिपोर्ट।
1: मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष ने ऊर्जा की सुरक्षा को वैश्विक राजनीतिक एजेंडे की फहरिस्त में सबसे पहले पहुंचा दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो तेल लाने ले जाने का अहम रास्ता है, ईरान के साथ चली अमेरिका और इसराइल की जंग के वक्त उसका पूरी तरह ब्लॉक किया जाना दिखाता है कि ऊर्जा को लेकर कितनी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं।
2: हम देख रहे हैं कि किस तरह ऊर्जा को संघर्ष के दौरान एक मुख्य हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका इस्तेमाल विरोधियों को चोट पहुंचाने, उनकी अर्थव्यवस्था को कमजोर करने और उनकी लड़ाई लड़ने की क्षमता को कम करने के लिए होता है।
1: सरकारों के लिए एनर्जी सिक्योरिटी पर्याप्त तेल और बिजली के होने से भी कहीं ज्यादा जरूरी है। मतलब पावर कहां से आ रही है, कितने पैसे देने पड़ेंगे और इसमें कौन खलल डाल सकता है। आपकी सप्लाई जितनी सुरक्षित होगी, आप बढ़ती कीमतों से उतना ही कम फिक्रमंद होंगे, क्योंकि आप दूसरे देशों पर निर्भर होते हैं।
3: निकटतम भविष्य में बात आती है सिर्फ अवेलेबिलिटी पर और बड़ी कीमतों को कम करने की, और लॉन्ग टर्म में सवाल ये उठता है कि कितना जल्दी आप तेल और गैस से दूरी बनाकर रिन्यूएबल एनर्जी अपनाते हैं।
1: दशकों से तेल और गैस ग्लोबल पॉलिटिक्स में ताकत की निशानी रहे हैं। अमेरिका बड़ी मात्रा में तेल और गैस का उत्पादन करता है, लेकिन वो चाहता है कि बाहर से उसके यहाँ तेल आए, और एनर्जी सप्लाई एक ऐसी चीज है जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्राथमिकता दी हुई है।
4: तेल की बड़ी कंपनियां अब वेनेजुएला का रुख कर रही हैं और वहां तेल के स्रोतों का पता लगा रही हैं। फिर वो वेनेजुएला और अमेरिका के लिए वहां से काफी पैसा लाएंगे और तेल कंपनियां भी पैसा कमा लेंगी।
2: तेल का सबसे बड़ा उत्पादक और बड़े स्तर पर गैस का उत्पादन करने वाला अमेरिका एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर उठी चिंताओं के बीच सबसे अच्छी स्थिति में है। हालांकि उन पर भी कीमतों का असर पड़ता है, और यही ट्रंप के लिए एक बड़ा सवाल बनता जा रहा है कि वो पेट्रोल पंप्स पर बढ़ रही कीमतों को लेकर क्या करेंगे और फिर सीमित संसाधनों से इसे कैसे मैनेज करेंगे।
1: ऊर्जा उत्पादन किस तरह बदल रहा है, ये समझने के लिए चीन एक अच्छा उदाहरण है। वो अभी भी कोयले, तेल और गैस का बड़ी मात्रा में इस्तेमाल करता है, लेकिन साथ ही सोलर पैनल्स, बैटरीज और दूसरी हरित ऊर्जा के उत्पादन में उसका दबदबा है। इससे चीन को उसी के देश में एनर्जी सिक्योरिटी मिल गई और विदेशों में उसका प्रभाव भी बढ़ा।
3: घरेलू स्तर पर ये बड़े स्टोरेज की तरह है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक विकास का स्रोत है। इससे चीन को फायदा मिलता है और वैश्विक स्तर पर उसे थोड़ी रियायत भी, क्योंकि वो किसी भी देश को ऊर्जा सप्लाई करने की स्थिति में है। जीवाश्म ईंधन में अस्थिरता को देखते हुए चीन अब और ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी विकसित करना चाहता है, ताकि ऊर्जा के लिहाज से वो ज्यादा आजाद बन सके।
1: यूरोप भी जीवाश्म ईंधन में ग्रीन एनर्जी की ओर जाने की राह पर है, और रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद से उसे दूसरों पर निर्भर रहने का अच्छा सबक मिल चुका है। यूरोपियन यूनियन ने रूसी तेल पर निर्भरता कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इससे सुरक्षा तो कुछ मायनों में मजबूत हुई है, लेकिन ये काफी मुश्किल और खर्चीली प्रक्रिया है।
2: भविष्य को लेकर यूरोप के पास प्लान है। वो कार्बन रहित अर्थव्यवस्था, तेल और गैस पर अपनी निर्भरता कम करने और ऊर्जा के दूसरे विकल्पों को इस्तेमाल करने के लिए काफी काम कर रहा है, लेकिन इसमें लंबा वक्त लगेगा। फिलहाल यूरोप पर बढ़ती कीमतों का असर होता है, जिसकी वजह से वो ऊर्जा को लेकर कॉम्पिटिशन में पीछे है, क्योंकि वो अपने बुनियादी मसलों पर ध्यान दे रहा है और अपनी डिफेंस फंडिंग भी बढ़ा रहा है।
1: तो भविष्य में होने वाले ऊर्जा उत्पादन पर इस सब का क्या असर होगा? ग्लोबल एनर्जी सिस्टम बदल रहा है और देशों की ये कोशिश है कि वो दूसरे देश पर ऊर्जा के लिए कम निर्भर हों, लेकिन बढ़ी हुई कीमतें और सीमित संसाधनों की वजह से बदलाव धीमा और मुश्किल बन गया है। फिलहाल ऊर्जा पर दबदबा अभी उन्हीं देशों का है जो एनर्जी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। बीबीसी संवाददाता क्रिस थॉर्प की रिपोर्ट।
0: और पिछले कुछ दिनों से चर्चा में है एक वायरस, यह है हंटा वायरस। अटलांटिक ओशन में एक क्रूज शिप में 2 लोगों में हंटा वायरस इन्फेक्शन के मामले कंफर्म हुए हैं। इस शिप पर मौजूद 3 लोगों की मौत हो चुकी है और शिप को कैनरी आइलैंड की ओर ले जाया जा रहा है, जहां वो सुरक्षित तरीके से डॉक कर सके। इसके 2 क्रू मेंबर्स को इलाज के लिए नेदरलैंड ले जाया गया। ये रेयर वायरस एक 69 साल के ब्रिटिश नागरिक में भी कन्फर्म हुआ है, जो इस वक्त साउथ अफ्रीका में आईसीयू में है। देखिए बीबीसी संवाददाता लॉरेन मॉस की रिपोर्ट।
3: केप वर्डे के तट के पास खड़े एमवी हॉन्डियस में हंटा वायरस के 2 मामले कंफर्म हुए हैं। इसे डॉक करने की अनुमति नहीं दी गई है। 5 और लोगों में इन्फेक्शन होने की आशंका है। यात्रियों को केबिन में रहने को कहा गया है। इसमें 30 ब्रिटिश भी शामिल हैं। दूर दराज के इलाकों में जाने वाली ये डच क्रूज शिप 20 मार्च को अर्जेंटीना से रवाना हुई थी। इसे मंगलवार को अफ्रीका के पश्चिमी तट के पास केप वर्डे पहुंचना था। 3 हफ्ते पहले एक डच नागरिक

0: की मौत हुई थी। बाद में उनकी पत्नी भी गुजर गईं। 69 साल के एक ब्रिटिश शख्स जोहान्सबर्ग में आईसीयू में है। क्रू के दो सदस्य भी बीमार हैं। अमेरिका के बॉस्टन के रहने वाले जेक रोसमारिन भी शिप पर मौजूद लोगों में से हैं, जिन्हें किसी अच्छी खबर का इंतजार है।
1: हम सिर्फ एक स्टोरी या हेडलाइंस नहीं हैं, हम इंसान हैं, हमारे परिवार हैं, जिंदगी है, घर पर लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं।
0: हंटर वायरस चूहों जैसे जानवरों से फैलता है और आमतौर पर संक्रमित पेशाब, मल या लार के संपर्क में इंसानों तक पहुंचता है। ये सांस या किडनी से जुड़ी गंभीर बीमारियां पैदा कर सकता है। इसका एक व्यक्ति से दूसरे में फैलना आम नहीं है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ ऐसा हुआ हो।
2: We do believe that there may be some human-to-human transmission that's happening.
3: हमें लगता है कि बहुत करीबी लोगों के बीच, जैसे पति पत्नी या जो लोग एक ही कैबिन में रहें, उनके बीच इंसान से इंसान में इन्फेक्शन फैला हो। इसीलिए हम देख रहे हैं कि शिप में जिन लोगों में लक्षण हैं या जो मरीजों की देखभाल कर रहे हैं, वो पीपीई किट पहने।
0: मेडिकल टीम्स जहाज पर पहुंच चुकी हैं। इस इन्फेक्शन के लक्षण दिखने में 2 महीने तक लग सकते हैं। इसमें बुखार, सिरदर्द और उल्टी होना शामिल है। अभी इसका कोई खास इलाज नहीं है।
4: हमें नहीं पता कि जो लोग अभी बीमार हैं, वो कब और कहां संक्रमित हुए। क्या वो जहाज पर चढ़ने से पहले संक्रमित हुए थे, इसलिए समझना मुश्किल है कि आगे कौन बीमार पड़ेगा।
0: 2 मरीजों को एमवी हॉन्डियस से एयरलिफ्ट कर नीदरलैंड्स ले जाया जाएगा। इसके बाद ये जहाज उत्तर की ओर कैनरी आइलैंड्स जाएगा, जहां ये फैसला लिया जाएगा कि इसे डॉक करने की अनुमति मिलेगी या नहीं। WHO उन लोगों को तलाशने की कोशिश कर रहा है जो संक्रमित लोगों के संपर्क में आए थे। WHO का कहना है कि आम लोगों के लिए जोखिम कम है। ये समझने में अभी वक्त लगेगा कि ये संक्रमण कैसे फैला। बीबीसी संवाददाता लॉरेन मॉस की रिपोर्ट।
5: और क्या आपने ऐसे गोरिल्ला देखे हैं जिनकी पीठ चांदी के रंग की है? ये पूर्वी अफ्रीका के माउंटेन गोरिल्लाज हैं, जो अवैध शिकार के चलते खतरे में रहे। इन्हें विलुप्त होने वाली प्रजाति माना जाता रहा है, लेकिन बीते कुछ सालों में इनकी संख्या बढ़ गई है। कैसे हुआ ये? बीबीसी संवाददाता मायरा अनुबी ने ये जानने के लिए दक्षिणी पश्चिमी युगांडा के जंगल का दौरा किया।
6: धरती पर मौजूद कुछ ही जगहें ऐसी हैं जहां अनोखे और दुर्लभ माउंटेन गोरिल्ला देखे जा सकते हैं, और ये जंगल उन्हीं में से एक है। इनका डीएनए इंसानों से बहुत मेल खाता है और इन्हें इंसानी बीमारियां आसानी से हो सकती हैं, इसलिए इनके करीब जाने पर मास्क पहनना जरूरी है। ये दुनिया में मौजूद हजारों माउंटेन गोरिल्लास में से एक है, जिसकी पीठ चांदी जैसे रंग की है। इसके परिवार में लगभग 7 सदस्य हैं और ये इंसानों के बीच काफी कम्फर्टेबल है। इनकी प्रजाति को खतरा होने के बावजूद इनकी संख्या बढ़ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्हें बचाने में जुटे लोग काफी मेहनत कर रहे हैं।
7: ये बिल्कुल हमारे जैसे हैं, नरम दिल और मिलनसार, मगर काफी बड़े भी हैं और बहुत अनसेफ भी हैं। इन्हें देखकर आपको लगेगा कि इन्हें बचाया जाना चाहिए।
6: वो चाहती हैं कि जैसे वो खुद इन्हें बचाने में जुटी हैं, आसपास के लोग भी वैसा ही करें। कुछ लोग मीट के लिए इनका शिकार करते हैं क्योंकि यहाँ खाने की कमी है, इससे ये खतरे में हैं। इसलिए ग्लैडीज ये ध्यान रखती हैं कि इन लोगों की आमदनी होती रहे। यहाँ पर जो चीज बदलाव ला रही है वो है कॉफी। इन बीन्स की वजह से लोग शिकार करना छोड़ खेती अपना रहे हैं। एलिफाज भी पहले कभी एक शिकारी हुआ करते थे, लेकिन आज कॉफी बीन्स उगा रहे हैं। इनके कॉफी बीन्स बाजार में गोरिल्ला कंजर्वेशन कॉफी के नाम से बिक रहे हैं।
8: जब मैं बाजार में कॉफी बेचता हूँ तो मुझे बहुत मुनाफा होता है। मैं अपने परिवार का खर्चा उठा पाता हूँ और अपने बच्चों के स्कूल की फीस भी जमा कर पाता हूँ। मैं लोगों को रोजगार भी दे रहा हूँ। कुल मिलाकर हमारी जिंदगी बदल गई है।
6: ये सब उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए है, ताकि वो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जंगल पर निर्भर ना हो, और इसलिए भी ताकि वो ना तो कोई बीमारी लें और ये गोरिल्ला भी बीमारी से बचे रहें। एक और तरीके से भी वो स्थानीय लोगों की मदद करती हैं। हेल्थ वर्कर लोगों के घर जाकर ये देखते हैं कि वो साफ सफाई रखें। इसके लिए उन्हें सलाह भी दी जाती है।
9: इससे लोगों और जानवरों के बीच तालमेल बनाने में मदद होती है और बीमारियां भी नहीं फैलती।
6: ये सिर्फ एक ड्रिल है, लेकिन ह्यूमन गोरिल्ला रेजोल्यूशन टीम एक्शन में है। इनका काम कॉफी के खेतों से गोरिल्लास को सुरक्षित ढंग से दूर रखना। ऐसा इसलिए ताकि गोरिल्लास के साथ होने वाले टकराव को रोका जा सके।

0: इसका नतीजा ये है कि इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है और अब ये खतरे की लिस्ट से बाहर आ गए हैं। बीबीसी संवाददाता मायरा अनूबी की रिपोर्ट।
1: और अब दिखाते हैं मेट गाला की झलक। मैडोना से लेकर बियॉन्से, एन हाथवे और कई वर्ल्ड फेमस सितारे देखिए यहां किस रूप रंग में नजर आए। और बीबीसी दुनिया में आज इतना ही, आपसे कल रात 10 बजे

0: जारी नहीं किया। अमरीकी फौज ने भी जहाज की स्थिति बारे कोई जानकारी नहीं दी है। केसी 135 स्टैट्रो टैंकर एक फौजी जहाज है जिस दे पिछले स्वीप्ट विंगा दे हेठा चार टर्बोफैन इंजन लगे हुए ने। यह मुख्य तौर पर मध हवा च रीफ्यूलिंग लिए वरत्या जाता है। जहाज च रीफ्यूलिंग सिस्टम के उपर एक कारगो डैक है जिस नाल ए यात्री उपकरणों ले जा सकता है। यह पिछले 60 सालों तो अमरीकी हवाई सेना के कार्यों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जाने के IMF दी चीफ क्रिस्टलाइना जॉर्जीवा ने अमरीका अते ईरान विचाले वधदे तनाव नूं लैके पूरी दुनिया लई खतरे दी घंटी वजा दित्ती है। IMF ने चेतावनी दित्ती है कि जेकर अमरीका ईरान जंग 2027 तक जारी रहिंदी है तां दुनिया नूं अनुमान तों किते ज्यादा भयानक नतीजे भुगतने पै सकदे ने। IMF चीफ मुताबक जेकर ए जंग लंबी खिंची गई तां कच्चे तेल दीआं कीमतां $125 प्रति बैरल तक पहुंच गईआं तां ग्लोबल आर्थिकता बुरी तरह नाल प्रभावित होवेगी। शेवरॉन दे चेयरमैन माइक विर्थ ने भी चेतावनी दित्ती है कि हॉर्मूज स्ट्रेट दे बंद होण नाल दुनिया भर च तेल दी सप्लाई च वड्डी कमी आ सकदी है क्योंकि दुनिया दी 20% तेल सप्लाई इसे रस्ते राही हुंदी है। रिपोर्टां मुताबक जंग दे चलदिआं 2026 च ग्लोबल विकास दर डिग के 2.5% तक रह सकदी है जदके महंगाई 5.4% तक पहुंचण दा खदशा है। जॉर्जीवा ने दस्या कि खादा पहला ही 30% तो 40% तक महंगीआं हो चुकीआं ने जिस कारण खाण पीण दीआं चीज़ां दे भाव 3% तो 6% तक वध सकदे ने। माहिरां दा मनणा है कि जेकर जंग लंबे समय तक चली तां दुनिया दीआं अर्थव्यवस्थावां सुंगड़न लग जाणगीआं ते इस दा सब तो पहला बुरा असर एशियाई देशां ते देखण नूं मिलेगा। IMF दा कहना है कि वह सप्लाई चेन्स ते पैण वाले असर दी बारीकी नाल निगरानी कर रहा है। नीति घड़न वालियां नूं चेतावनी दिंदे होए जॉर्जीवा ने कहा कि स्थिति बहुत गंभीर हुंदी जा रही है ते इस नूं मामूली समझना भारी पै सकदा है। अमरीका की राजधानी वाशिंगटन च मंगलवार दोपहर नैशनल मॉल के नेड़े एक हथियारबंद शक्की अते सीक्रेट सर्विस विचाले हुई हिंसक झड़प तो बाद व्हाइट हाउस नूं कुछ समय लई लॉकडाउन ते रख्या गया। हथियारबंद शक्की वालों सुरक्षा कर्मियों ते फायरिंग किए जाने तो बाद जवाबी कार्रवाई च उस नूं गोली मार दिती गई जदके क्रॉस फायर की लपेट च आउण कारण एक अल्लड़ राहगीर भी जख्मी हो गया। दरअसल यह घटना दोपहर करीब 3:30 वापरी जदों व्हाइट हाउस कंपलैक्स की बाहरी सीमा ते गश्त कर रहे सादे कपड़िया च मौजूद सीक्रेट सर्विस दे कर्मचारियों ने एक शक्की व्यक्ति की पछाण की जिस कोल हथियार होण दा खदशा सी। डिप्टी डायरेक्टर मैट कवीन ने दस्या कि हथियारबंद शक्की नाल निजिठण लई वर्दीधारी अधिकारियों नूं बुलाया गया। इस दौरान शक्की कुछ दूर पैदल भज्या ते हथियार कढ के साडे एजेंट्स अते अधिकारियों वल गोली चला दिती। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों ने जवाबी गोलीबारी की अते इस नाल भिड़ गए। उस व्यक्ति नूं गोली लगी। शक्की नूं हस्पताल ले जाया गया। हालांकि अधिकारियों ने कहा कि उसकी हालत ते उन्हां दी कोई टिप्पणी नहीं है। इस गोलीबारी दौरान एक राहगीर नूं भी गोली लगी है। अधिकारियों अनुसार राहगीर नूं शक्की ने ही गोली मारी सी। यह गोलीबारी व्हाइट हाउस तों कुछ ही दूरी ते स्थित 15th Street अते इंडिपेंडेंस एवन्यू दे कोल हुई। सीक्रेट सर्विस दे एजेंट्स ने दस्या कि शक्की कुछ समय तो उन्हां दी निगरानी च सी। गोलीबारी तो बाद सीक्रेट सर्विस ने व्हाइट हाउस दे नॉर्थ लॉन ते मौजूद पत्रकारां नूं अंदर जाण दा संदेश दिता। कैनेडा अते अमरीका
1: तमिलनाडु में निकाय चुनाव होने वाले थे और खबर आती है कि एक सुपरस्टार का फैन क्लब चुनावी मैदान में पहली बार उतरेगा। फैन क्लब का नाम विजय मक्कल यक्कम VMI। VMI नाम के इस फैन क्लब को साल 2009 में बनाया था एक्टर विजय ने, जिन्हें उनके चाहने वाले कहते हैं विजय थलपति। थलपति जिसका शाब्दिक अर्थ है कमांडर या सेनापति, यही विजय अब तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में एक बड़े पॉलिटिकल कमांडर बनकर उभरे हैं। सूबे की दो बड़ी और ताकतवर पारंपरिक पार्टियों DMK और AIADMK की जड़ें हिला दी हैं। दोपहर 12 बजे तक जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तमिलनाडु की 234 सीटों में से 108 से 110 सीटों पर टीवी के आगे चल रही है। तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए 118 सीटों की जरूरत है। फाइनल नंबर बदल सकते हैं लेकिन एक बात यह तय है कि विजय का फर्स्ट पॉलिटिकल शो सुपरहिट हो गया है। अपने पहले ही चुनाव में विजय की पार्टी तमिलगा वेट्री कजगम TVK ने जो प्रदर्शन किया है उसे ऐतिहासिक की कैटेगरी में शामिल किया जा सकता है क्योंकि इस पार्टी की नींव ही पड़ी साल 2024 में। 2 फरवरी की तारीख थी जब विजय ने आधिकारिक तौर पर अपनी राजनीतिक पार्टी का

ऐलान किया था। दोपहर करीब 12 बजे विजय के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक स्टेटमेंट रिलीज हुआ, 3 पन्नों की चिट्ठी। उसमें लिखा था, मैं अपनी नई पार्टी तमिलगा वेट्री कसगम टीवीके की घोषणा कर रहा हूं। उच्चारण में अगर इधर उधर हुआ हो तो उसके लिए माफी चाहता हूं। लेकिन सबसे शॉकिंग लाइन चिट्ठी के अंत में थी, 2026 चुनाव से पहले मैं अपनी बची हुई फिल्में पूरी करूंगा और फिर सिनेमा से पूरी तरह संन्यास ले लूंगा। तब पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स और लोगों को समझ नहीं आया था कि आखिर पॉलिटिक्स में एंट्री करने के लिए सिनेमा से संन्यास की जरूरत क्या है, क्योंकि रजनीकांत राजनीति में आए लेकिन एक्टिंग नहीं छोड़ी उन्होंने, कमल हसन ने नहीं छोड़ी, एमजीआर ने भी सीएम बनने के बाद आखिरी फिल्म की थी। विजय की टाइमिंग देखिए, उन्होंने 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा, उन्होंने अपनी नजरें सीधे 2026 के विधानसभा चुनाव पर टिका रखी थी। 27 अक्टूबर 2024 में विक्रवंडी में उनकी पहली रैली होती है, लाखों की संख्या में लोग वहां मौजूद थे, लाल और पीली धारियों वाले झंडों से पूरा मैदान चमक रहा था। इन सब के बीच कड़ी धूप में धीमी दौड़ लगाते हुए विजय सभा में दाखिल होते हैं। लोगों का जोश अगले दिन के देश भर के अखबारों में छपने वाला था। उस मंच से विजय ने अपनी विचारधारा भी साफ कर दी थी, सेक्युलर सोशल जस्टिस। उन्होंने अपने गुरुओं के तौर पर पेरियार, के कामराज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वेलू नचियार और अंजलि अम्माल की तस्वीरें लगाई। ये एक बहुत ही सधा हुआ पॉलिटिकल स्टैंड है। पेरियार का नाम लेकर उन्होंने द्रविड़ विचारधारा, डीएमके और एआईएडीएमके के वोट बैंक को साधा। कामराज के जरिए कांग्रेस के पुराने समर्थकों को और अंबेडकर के जरिए दलित समाज को, वेलू नचियार और अंजलि अम्माल के जरिए तमिल राष्ट्रवाद और लैंगिक न्याय को विजय ने साधने की कोशिश की। विजय ने अपने भाषण में दो पार्टियों को अपना दुश्मन बताया था, पहला वैचारिक दुश्मन यानी बीजेपी और दूसरा राजनीतिक दुश्मन यानी डीएमके। विजय ने खुद को दिल्ली यानी बीजेपी और गोपालपुरम यानी डीएमके परिवार दोनों के विकल्प के रूप में पेश किया था अपनी रैली से, और अपनी गंभीरता साबित करने के लिए उन्होंने वो किया जो एमजीआर या जयललिता ने भी अपने पीक पर नहीं किया था, ऐलान कर दिया कि वो सिनेमा छोड़ रहे हैं और उनकी 69वीं फिल्म उनकी आखिरी फिल्म होगी। इस रैली के ठीक 11 महीने बाद 27 सितंबर को तमिलनाडु में एक और रैली का आयोजन हुआ। रैली में 10,000 लोगों के लिए इंतजाम थे, लेकिन भीड़ उमड़ गई व्यवस्था से बहुत ज्यादा, इतनी कि भगदड़ मच गई, 41 लोगों ने जान गंवा दी, इनमें 2 साल का एक बच्चा भी शामिल था। इस रैली में विजय 7 घंटे की देरी से पहुंचे थे। भगदड़ के बाद विजय निशाने पर आ गए, पॉलिटिकल पार्टियों से लेकर मीडिया तक में विजय पर सवाल उठ रहे थे, जो कि बनते भी थे। उन्होंने भगदड़ के बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया, संवेदना जताते हुए कहा कि मृतकों के परिजनों को 20 लाख रुपए की मदद देंगे। टीवीके और विजय ने चुनावी मदद के लिए बिहार से एक सलाहकार को अपने साथ जोड़ा, नाम प्रशांत किशोर। वही प्रशांत किशोर जिनकी सीवी में बतौर पोल स्ट्रेटेजिस्ट नरेंद्र मोदी की 2014 वाली जीत से लेकर बंगाल में ममता बनर्जी तक की 2021 वाली जीत शामिल है। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और तमिलनाडु में ही डीएमके के लिए चुनाव में सलाहकार की भूमिका वो पहले निभा चुके हैं। तो अब विजय ने प्रशांत किशोर के साथ हाथ मिलाया हुआ था। ये और बात है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में खुद प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज एक भी सीट नहीं जीत पाई, लेकिन वो विजय की पार्टी टीवीके को तमिलनाडु फतह करने के लिए सलाहियत दे रहे थे। 2025 में ही फरवरी महीने के शुरुआती दिनों में पीके और विजय की एक मुलाकात हुई, लेकिन तब कहा गया था कि ये बस एक शिष्टाचार भेंट है। लेकिन फरवरी खत्म होते होते एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ और वहां विजय और पीके एक मंच पर आए। उसी कार्यक्रम में पीके ने कहा था, मैं यहाँ अपने भाई अपने दोस्त विजय को कोई चुनाव जीतने के लिए मदद करने नहीं आया हूँ, विजय को किसी मदद की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि वो तमिलनाडु के लिए नई उम्मीद है। इसी इवेंट में पीके ने मजाकिया लहजे में कहा था कि मुझे तमिलनाडु में सबसे पॉपुलर बिहारी बनना है, तो मुझे धोनी के साथ कंपटीशन करना होगा जो सीएसके यानी चेन्नई सुपर किंग्स को आईपीएल जिताते हैं, हम आपके नेता के नेतृत्व में टीवीके को जीत दिलाएंगे, इसलिए मैं यहाँ हूँ। दिलचस्प है कि 5 साल पहले जब 2021 में तमिलनाडु में विधानसभा के चुनाव हुए, तब पीके ने डीएमके के लिए सलाहकार वाली भूमिका निभाई थी। चुनाव के नतीजे आए तो डीएमके को जीत मिली थी, एमके स्टालिन तब सूबे के मुख्यमंत्री बने थे। टीवीके को 2026 में प्रशांत किशोर से यही उम्मीद थी कि 2021 वाला मैजिक रिपीट हो सके और पार्टी को जीत मिले, जो कि होता दिख रहा है। तमिलनाडु में एक अरसे से दो ही पार्टियों के बीच सत्ता रही है, डीएमके और एआईएडीएमके। दोनों के वर्चस्व को चुनौती देने वाला कोई मजबूत कंटेंडर नहीं आया था, लेकिन विजय आए तो ऐसी चर्चा होने लगी कि इस खाली स्पेस को विजय भर सकते हैं और दोनों पार्टियों को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। टक्कर देने के लिए विजय ने

उमर कसा, तब एक और सवाल कौंधने लगा कि क्या ये टक्कर विजय अकेले लेंगे या किसी पार्टी के साथ यानी गठबंधन। इस सवाल के सिरे खोले कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक बयान ने। विजय की एक फिल्म बनकर तैयार थी जननायगन, रिलीज होने वाली थी जनवरी 2026 में, लेकिन CBFC में जाकर फिल्म अटक गई। इस पूरे विवाद पर राहुल गांधी ने 13 जनवरी 2026 को सोशल मीडिया पर लिखा, द I&B मिनिस्ट्रीज अटेम्प्ट टू ब्लॉक जननायगन इज एन अटैक ऑन तमिल कल्चर। मिस्टर मोदी, यू विल नेवर सक्सीड इन सप्रेसिंग द वॉइस ऑफ तमिल पीपल। राहुल के इस बयान को फिल्म के सपोर्ट के तौर पर कम और पॉलिटिकल गोटी सेट करने के तौर पर ज्यादा देखा गया था। सियासत का सिद्धांत है दुश्मन का दुश्मन दोस्त, तो चर्चा छिड़ी कि क्या यही थ्योरी राहुल गांधी और विजय को एक टेबल पर ले आएगी। लेकिन ये सवाल विजय के लिए उतना बड़ा नहीं था जितना ये कि क्या जो लाखों लोग टिकट खरीद कर सिनेमा हॉल में जाकर विजय की फिल्में देखते हैं, क्या वो लोग विजय की पार्टी को वोट भी देंगे? क्या जो लोग फिल्मों में विजय के डायलॉग पर सीटियां बजाते हैं, शर्ट फाड़ लेने की हद तक उत्साहित हो उठते हैं, क्या वो फैंस विजय के पॉलिटिकल वादों पर भरोसा भी जताएंगे? इतिहास में गवाही है कि भीड़ हमेशा वोट में नहीं बदलती है। शिवाजी गणेशन को देखने के लिए लाखों लोग आते थे लेकिन वोट नहीं दिया। चिरंजीवी की रैलियों में पैर रखने की जगह नहीं होती थी लेकिन चुनाव हार गए। कमल हसन, विजय कांत, यहां तक कि रजनीकांत भी आखिरी मौके पर पीछे हट गए। फिर करुणानिधि, MGR और जयललिता तक के उदाहरण हैं जो थे एक्टर्स ही, राजनीति में आए और सूबे के CM तक बने। इंतजार इसी 4 मई की तारीख का था जो बताने वाली थी कि विजय किस ब्रैकेट के उदाहरण बनेंगे। चुनाव के नतीजे बता रहे हैं कि करुणानिधि, MGR और जयललिता वाले ब्रैकेट और विजय के बीच की दूरी बेहद कम रह गई है। चुनाव नतीजों के आखिरी नंबर्स जो भी होंगे, जिस भी पार्टी को जितनी सीटें मिलेंगी, वो अपडेट आपको हम लगातार खबर गांव पर देते रहेंगे, पहुंचाते रहेंगे। आप खबर गांव देखते रहिए। इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है सर्वेश ने, मेरा नाम आकाश है, शुक्रिया।

0: ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0200-0203-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
1: मिलिए डॉक्टर मघर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देते हैं मुकम्मल केयर।
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
2: नए पेशेंट्स का खैर मुकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं।
1: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-6890 687-360-6890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक।
2: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी।
3: अपने बिजनेस को दीवारों से बाहर निकालिए और सीधे अपने ग्राहकों तक पहुंचाइए। सबरंग रेडियो अब आता है लाइव आपके लोकेशन पर, जहां होता है एनर्जी एक्साइटमेंट और रियल कनेक्शन। चाहे हो आपकी शॉप ओपनिंग, कोई खास इवेंट, प्रोडक्ट लॉन्च या कम्युनिटी सेलिब्रेशन, हम सिर्फ प्रमोशन नहीं करते, हम आपके ब्रांड को एक यादगार अनुभव बना देते हैं। हमारी टीम पहुंचती है आपके पास, लोगों से जुड़ती है और आपकी पहचान को फैलाती है पूरे 250 किलोमीटर के नेटवर्क में। ज्यादा पहचान, ज्यादा भरोसा, ज्यादा ग्राहक। अपने बिजनेस को बनाइए खास, दिखाइए

0: सुनाइए और सेलिब्रेट कराइए आज ही बुक कीजिए सबरंग रेडियो के साथ आपका ब्रांड ऑन एयर भी और ऑन ग्राउंड भी मंडे ट्यूसडे थर्सडे एंड फ्राइडे 7 to 8 PM संडे 1 to 5 PM
1: Asia Pacific Immigration Consulting Limited. Student visa, visitor visa, super visa, LMIA applications, family immigration, provincial nominee application, ate citizenship application vich lamba tajruba te maharat rakhda hai. Tuhadi sahulat layi main Maninder Singh Tillo ate Inderjot Kaur Tillo ikko chhat het immigration ate insurance diyan sewawan pradan karde han. Sanu sampark karn layi 403-225-1111 Maninder Singh Tillo Asia Pacific Immigration Consulting Limited.
2: Regulated Canadian Immigration Consultant.
1: 403-225-1111.
0: From the heart of Calgary to every corner within a 250-kilometer reach, Sabrang Radio is connecting voices, stories, and communities like never before. Whether you're in Calgary, Airdrie, Chestermere, Cochrane, or tuning in from Okotoks, High River, Strathmore, and beyond, we are one sound, one family, one Sabrang. Feel the rhythm, celebrate the culture, and stay connected with voices that matter. More events, more stories, more celebrations are on the way, only on Sabrang Radio, your voice across every mile. Visit our official website, www.sabrang.ca.
3: अपने परिवार लई फैमिली डॉक्टर सिक्योर करो
4: कॉल करो 587-360-6890 लाइफ लाइन मेडिकल क्लिनिक वॉक इन सवेरे 9 बजे तो शाम 6 बजे तक
3: सानू मिलो किंग्स व्यू बुलेवर्ड ते या कॉल करो 587-360-6890
4: थोड़े परिवार दी सेहत साड़ी जिम्मेदारी

0: बहुत ही प्यारी कवाली मौला जो कि अली जफर ने गाई है इट्स अमेजिंग इसकी जो वीडियो बहुत ही प्यारी है अगर आपको मौका मिले तो इसकी वीडियो वो जो है जरूर देखना है बहुत ही प्यारी मौला के नाम से MAULA इट्स एन ऑफिशियल वीडियो ऑन अली जफर चैनल अली जफर यस ही इज कमिंग टू कैलगरी फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ वाइल May 17th संडे का दिन है शाम को 7:30 PM एट जेनेसिस सेंटर 8:00 शो विल स्टार्ट अगेन इट्स एट जेनेसिस सेंटर और इट्स जो है कवाली नाइट और प्लस ये जो है फंड रेजर फॉर द ग्रीन डोम स्कूल सो प्लीज डू सपोर्ट एक तो हमारे पाकिस्तानी आर्टिस्ट को सपोर्ट करना आपका बहुत जरूरी बल्कि आपका फर्ज बनता है इसलिए आप वो इतने दूर से आ रहे हैं जो है खाली आप सबसे मिलने के लिए और प्लस जो है आप उसके साथ जो है ग्रीन डोम स्कूल को जो अपना फंडरेजर तो उसको भी आप जो है अपना हेल्प करेंगे तो इट्स जो है टू कॉज इन वन तो इंशाल्लाह आप सब आएंगे और जो है टिकट स्टार्ट फ्रॉम द $50 इट्स ओनली 50 बड़ा रीजनेबल है और इट इज अवेलेबल ऑन इवेंट ब्राइट और जैसे हमें लिंक मिलेगा विल शेयर ऑन द फेसबुक फीड एज वेल ताकि और अगर किसी को चाहिए यू कैन टेक्स्ट मी 587-899-4786 so I can send it to you as well so I think it'll be really nice to have you all there theek hai apna Irfan kya kehte ho
1: I really just want to say don't be the person who regrets not coming because it's the first time he's coming for a Qawwali performance in the entire world right we see his videos when we experience the videos we just listen to two of them and think about how much we enjoyed them Amazing. Nobody's going to be able to experience it live except for the people who come to the tour who come to these performances and all the Calgary people this is your one opportunity it's a night you're probably never going to forget and it's going to be a night where we're going to get some very productive work done for the community as well what more do you need than enjoyment and productivity right that's what we need to do that's the mission so let's do these together inshallah May 17th I hope to see everybody there buy your tickets now
2: Thank you. You know, I'll echo that. इन लोगों को आप बहुत सपोर्ट करिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं और जैसे कि आपने सुना कि फंड रेजर क्यों हो रहा है वो अब ग्रेड नाइन बनाना चाह रहे हैं क्योंकि बच्चे वहाँ बहुत इंजॉय कर रहे हैं तो वो चाहते हैं कि वो वहाँ से मूव ना हो तो ये उनके लिए अब थर्ड फ्लोर बन रहा है तो उनके लिए फंड रेज करना चाह रहे हैं तो ये आपका बहुत नोबल कॉज होगा कि इसमें से आप आकर उनको सपोर्ट करें और ये बच्चे

0: बच्चों के लिए है ये बहुत अच्छा कॉज होता है जो बच्चों के एजुकेशन के लिए कोई काम करता है जैसे कि हम लोग सब हॉस्पिटल्स के लिए करते हैं और यूनिवर्सिटीज के लिए करते हैं नमल यूनिवर्सिटी भी का भी होता है इंडस हॉस्पिटल का भी होता है सब ये सब जो पैसे होते हैं ये बहुत अच्छे कॉज के लिए जाते हैं तो ये जो इस्लामिक स्कूल के कॉज के लिए हो रहा है ये बहुत अच्छा कॉज है और आपको बहुत मजा आएगा और इंजॉय भी करेंगे और आपको खुशी भी होगी कि आप बहुत नोबल कॉज के लिए वहाँ पर हैं तो प्लीज आप मत भूलिएगा 17 मई को इतवार का दिन है और इट्स अ लॉन्ग वीकेंड 7:30 उनका डोर्स खुल जाएंगे जेनेसिस सेंटर में और 8 उनका प्रोग्राम शुरू होगा और इनका जो है ये इवेंटब्राइट में आप टिकट ले सकते हैं और 50-75-100 की रेट्स हैं तो आप जाएं एंजॉय करें आपको कहीं भी बैठेंगे आप इंजॉय कर सकते हैं उनका स्टेज है तो आपको सब अच्छी तरीके से दिखाई भी देगा तो ये बताएंगे कि मिसेस सागा में कब हो रहा है
1: मिसेस सागा इज हैपनिंग द डे बिफोर मे 16th
0: ओह मे 16th हो रहा है
1: अच्छा अच्छा द पैरामाउंट फाइन फूड फेस्टिवल
0: अच्छा अच्छा दैट्स ग्रेट
2: इतना मुझे पता है कि बीना जी आए फॉर श्योर राहत जी भी वो भी आ रही है उन्होंने कहा एक्सट्रा टू बी देयर
1: वेरी गुड
2: उनके साथ सुल्तान भाई भी है उनके वो भी आएंगे आई नो गारंटी प्लस हम भी आएंगे हियर वी गो व्हाट एल्स कैन यू आस्क फ्रॉम मी मैन कुछ और मांगते वो भी मिल जाता आज नो आई थिंक इट्स अमेजिंग थैंक्स फॉर ब्रिंगिंग हिम एंड थैंक्स फॉर डूइंग ऑल दिस हार्ड वर्क आई नो इट्स नॉट इजी
1: Thank you for supporting all the hard work.
2: Well, we try.
1: It's not possible to do anything on this people's support.
2: Yes. Anytime. Yeah, you know, or... Achha, Heather, Mohammed, aapke pehli baar, kaisa laga radio pe aage aaj pehli baar?
3: Honestly, I was a bit nervous at first.
2: Of course.
3: But I think seeing how natural you guys are, I felt more comfortable as the show kept going on. I was like, this is like talking and
0: yeah,
3: it's like...
0: Yeah, this is something we do.
3: And you guys are very natural with it, so I felt
0: Thank
3: comfortable.
0: Thank you so much.
2: मैंने कहा था इनको जब याद शुरू में मैंने कहा कि आपकी आंखें बहुत प्यारी हैं आपके भी बच्चे हैं
3: नहीं
2: ये सिंगल है गाइस अभी तक
0: ये देखें दो दो तीन तीन काम साथ कर रहे हैं
2: वी सपोर्ट यू इन एवरी वे
1: वेरी प्रोडक्टिव
3: वन कॉम्बो
0: बहुत ज्यादा अच्छा प्रोग्राम है यहाँ पे सब कुछ साथ चलता है
2: इरफान जब भी अपना ग्रीनों को कितने साल हो गए 3-4 साल हो गए
1: ऑपरेशन दिस इज इन इट्स थर्ड ईयर ऑफ स्कूलिंग
2: थर्ड ईयर
1: स्कूलिंग
2: तो जो कितने बच्चे स्टार्ट हुए थे
1: Started from 140 students.
2: Yeah, I remember that. It was very, yeah.
1: Then it went up to about 200-something students.
2: Yeah.
1: And now 360 students.
2: Nice.
1: And then we're hoping with the third floor we can go up to 500.
2: Yeah.
1: And then once some Alberta regulations of, like, existing history come, then we can increase the capacity even further.
2: Amazing, amazing. So I think, you know, it's good to see every year you guys are growing.
1: Yeah.
0: That there's a progress.
1: Going. It's a progress,
0: yeah.
1: You should see some of these kids. They're so excited to come to school.
0: Yeah.
2: And it's under the Alberta Education Board.
1: Yeah,
2: as well.
1: All the curriculum, everything everything is perfect. Environment is perfect.
2: Nice.
1: Very positive environment.
0: Yeah.
1: You, if you come, it's very quiet.
2: Yeah.
1: The kids are very well behaved.
2: Yeah.
1: Kids are very happy. They have friends. They have everybody around them.
2: Yeah. Nice. Yeah. For you guys have a gym. I think auditorium as well. The one up jo rent pe bhi de sakte.
1: Yes, Green Dome Events Hall.
2: Yeah. It's very a reasonable price, guys. Agar aapne kuch rent karna for any event. For any restriction on the event, I'm sorry to ask you.
1: Just no alcohol, no pork.
2: Of course not. Yeah. वो तो हम भी नहीं रखते हमारे किसी event में.
0: Yeah.
2: No, I think it's great to see. I think inshallah everything will be great.
0: Yeah, great.
2: आज का जो show है, let's say our sponsor one more time.
0: Yeah.
2: आज का जो sponsor है, हमारा जो show है, sponsored by Countryless Toyota. इनका कहना है, if you're looking for buying or selling any car. जो है विजिट दर वेबसाइट chtoyota.com और इनका फोन नंबर 403-290-1111 थिंक टोयोटा थिंक द जायंट कंट्रीज टोयोटा मोबाइल मॉडगेज स्पेशलिस्ट रूबीना कासमल इफ यू नीड अ मॉडगेज शी वर्क्स फॉर द टीडी बैंक यू कैन कॉल हर 403-870-7069 403-870-7069 हमजा बट फ्रॉम द बट क्राइ बैंकुट हॉल अगर आपने रेंट करना हो फॉर अप टू 300 पीपल यू कैन जो है रेंट दिस लाइक अमेजिंग बैंकुट हॉल विद द ग्रेट फूड एज वेल 587-352-0094 Nasim Jewelers in Calgary you can get the Irfan you can get the gold design from Pakistan in Calgary jab bhi tumhari shaadi hogi to tumhari amma se kehna yahi se gold hai Pakistan ki design milegi 825-987-5000 inka phone number 825

0: 5,975,000. Into if you take my name, you'll get extra discount. Shehzad, me and Sab, our good friend, and of course, Aiz the Bashir, our good friend Bashir Sumani, who is New Horizon Mall, 403-720-2039-37.
1: And then, if you get your dulhan, you'll get them. Good friend, और अभी recently इन्होंने start किया है और इनका phone number है 403-560-6738 और इनकी Mother's Day की बहुत अच्छी sale चल रही है तो आप जरूर जाइए इन्होंने काफी सारी चीजों पे सेल लगाई भी है इनके पास सब कुछ तरह की फैसिलिटी है लेजर पिगमेंटेशन फेशियल्स और वैक्सिंग बहुत सारी चीजें हैं तो आप अपनी मम्मी को लेकर जाएं और उनको पैम्पर करें
0: और जस्ट द लास्ट थिंग जस्ट वांट टू से कांग्रेचुलेट टू ऑल योर टीम मेंबर्स ऑफ कोर्स हेदर यू आर हियर अपना मलिक भाई आई नो ही हैजंट बीन हियर फॉर अ व्हाइल नाउ आई नो इट्स सो मच हार्ड वर्क ही वाज डूइंग अर्ली इन दिस अर्ली 3 इयर्स अगो आई एम श्योर यू आर विद हिम लेकिन नो आप जो है कुडोस टू यू एंड योर टीम फॉर अमेजिंग जॉब आपने एक स्कूल को बेसिकली यू नो उसको पैदा किया फ्रॉम द बिगिनिंग फ्रॉम जो जमीन से आपने पूरा खड़ा किया माशाल्लाह अच्छे अच्छे पाकिस्तान के आर्टिस्ट भी आते हैं अच्छे अच्छे पाकिस्तान के क्रिकेट प्लेयर्स भी आते हैं जस्ट टू सपोर्ट फॉर दिस ग्रेट कॉज दैट्स द मेन थिंग इंशाल्लाह हमारी पब्लिक भी आएगी आपके जो इवेंट को जो है अपना सपोर्ट करेगी इट्स एट द जेनेसिस सेंटर यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद द $50 प्लस
2: यू कांट
0: देयर इज नो वे देयर इज नो वे लास्ट कमेंट
2: I think we've covered everything. I just want to say thank you so much for letting us come on the show. This, and I want you to know, Green Dome Islamic School, all these projects, all these things that we do, it's only possible if people support us, if people support the cause.
0: Yes.
2: They're doing just as much work as I am because they're all taking part.
0: Jiska
2: ek bande ka bhi haath lag gaya, andar na, to samjho ke job is finished.
0: Aur you know, iska jo, aapko wahan pe jo hai, apna chote bache padhte hain.
2: Exactly.
0: Imagine kitna bada sawab hai.
2: Exactly.
1: Yeah.
3: Nothing else. I think you said everything.
0: Good. Awesome.
1: Thank you so much. And it's been a great episode for a very good cause. And inshallah, we'll see you next week. Apna khayal rakhiyega. Aur bahut acha mausam hai. Aap enjoy kariye. Aur aapse phir mulaqat hogi agle hafte ko. Allah.
0: तो इंशाल्लाह मैं मिलूंगा आपको कल विद द नेक्स्ट एडिशन ऑफ जो है कॉफी जला आप जो है अपना 17 तारीख को यहाँ आएगा अपना कॉन्सर्ट में प्लस 18 तारीख को एक जो है फैमिली इवेंट होने जा रहा है इट्स अ फ्री इवेंट फॉर द होल फैमिली जो कि अपना स्पोर्ट्स बोर्ड करवा रही है तो इंशाल्लाह विल टॉक फॉर टू देयर गेस्ट टुमारो 8 PM टुमारो राइट हियर ऑन रेडियो सोसंगम 94.7 FM थैंक्स अगेन फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग इंशाल्लाह कल मिलेंगे अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखेगा एंड एंजॉय योर टाइम इवनिंग विद द फैमिली एंड द फ्रेंड्स एंड हैव सम कॉफी टी आइसक्रीम एंड इंशाल्लाह विल टॉक टुमॉरो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग लिसनिंग सलाम नमस्ते कल भी ऑन रेडियो सुसंगम 94.7 FM
4: You are listening to Fairchild Radio, CHKF FM 94.7, a multicultural radio station in Calgary.

0: ரியல்டர்
1: மேக்ஸ்வெல் சென்ட்ரல் தே ரியல்டர் மதீப் சிங் கெல் 4036171868.
2: फ्लाइट बहुत लेट हो गई, खान ले बर्गर ले लिए
3: ना जी, अप्पा ते गर्मा गर्म रोटी खावांगे।
2: माले नखरे ना करो, मेथो रात दे 3 बजे रोटियां नहीं पक दिया।
3: ओहो तो हानू नहीं कष्ट देना, अप्पा चलना है समोसा हाउस इंडियन कुजीन एंड स्वीट्स, जो 24 घंटे खुले हुंदे ने।
2: समोसा हाउस इंडियन कुजीन, ब्रेकफास्ट विच गर्मा गर्म परौठे, लंच एंड डिनर विच पूरियां, छोले भटूरे, फिश टिक्का, चाइनीज इंडियन फूड, हर प्रकार दी मिठाइयां अते केटरिंग भी करदे ने। इंडियन कॉफी अते कुल्लर स्पेशल चावी इना कोलो मिलदी है। हर प्रकार दे खाने वाली शानदार रेस्टोरेंट समोसा हाउस इंडियन कुजीन एंड स्वीट्स, ओपन 24 आवर्स, यूनिट 2154-43-10-104 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी, कॉल 403-400-CART-CART-CART 403-461-6161।
4: सोने घर दी निशानी हुंदी है शानदार फ्लोरिंग, जिथे कदम रखदियां ही तुहाडे मेहमान फ्लोरिंग कंपनी दा पता पुछन लग जान, ते ओ पता है कैलगरी कारपेट एम्पायर, जिथे तुसी ले सकदे हो अपनी पसंद दी फ्लोरिंग दा समान। फ्लोरिंग घर दा होवे या होवे कमर्शियल, नवा लवाना होवे या होवे रेनोवेशन दा प्लान, कारपेट हार्डवुड लेमिनेट टाइल ते होर शानदार फ्लोरिंग दे डिजाइनां नाल भरिया है इना दा शोरूम। अज ही इना दे शोरूम ते पुज्जो, 2935 19th Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी, कैलगरी कारपेट एम्पायर, फोन नंबर 403-510-1515, 2935 19th Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: ग्रोसरी खरीदने लई हमेशा याद रखो कैलगरी दा मशहूर सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर।
5: ताजियां सब्जियां, फल फ्रूट, दालां, मसाले ते बर्तना तो इलावा घरां दी वरतों दा हर समान मिलेगा, कीमतां कट ते क्वालिटी A1।
1: जानिया पछानिया नाम है सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर।
5: तुहाडी ग्रोसरी दियां लोड़ां पूरियां करन लई सांझा पंजाब दियां कैलगरी दे विच हन 6 लोकेशनां, हफ्ते दे 7 दिन सवेरे 9 बजे तो लैके शाम 9 बजे तक।
1: सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर, पहली लोकेशन 331-3690 वेस्टमिंस ड्राइव,
5: दूजी लोकेशन 117-7780 एवेन्यू,
1: तीजी लोकेशन 570-6520 फाल्कनरिज बुलेवार्ड,
5: चौथी लोकेशन 606 सिटीस्केप स्क्वायर,
1: पांचवी लोकेशन 3150-235 रेड एम्बर्स वे,
5: छेवीं लोकेशन 445 कैरिंगटन बुलेवार्ड नॉर्थ वेस्ट कैलगरी।
1: सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर दियां 6 लोकेशनां दा सांझा फोन नंबर
5: 403-835-2222। नॉर्थ ईस्ट कैलगरी दे कैसल रिज एरिया दे विच है लॉट खरीदन दा शानदार मौका, जिथे बनाए जा सकदे ने 3 टाउन हाउस। एना ही नहीं, एना तिना दे नाल लीगल बेसमेंट सुइट भी बनाईया जा सकदियां ने। बिल्डर्स ते इन्वेस्टर्स लई है शानदार मौका, फ्यूचर रेंटल इनकम लई है ए एक बहुत वधिया ऑप्शन। वधेरे जानकारी लई कॉल कर सकदे हो एमे नू 403-617-2111 ते, ते अमन गिल नू भी कॉल कर सकदे हो 403-479-7007 ते। बिल्डिंग परमिट पहला तो ही अप्रूव्ड है।
1: रेडियो सरसंगम 94.7 FM सुन रहे सारे श्रोतिया नू कुलदीप सिंह बलों सत श्री अकाल जी। अज दिन बुधवार मई महीने की 6 तरीक सन 2026 हुण तो लैके 6 बजे तक मेरा ते आप जी का साथ रहेगा। अज दे इस प्रोग्राम दे विच खबरां असी पेश करनियां ने, इस इन्हां खबरां की विस्तार सहित जानकारी असी कुछ पलां दे विच आप जी नाल सांझी करांगे कि कि खबरां ते चर्चा करनी है। इस तों अलावा जी एक गलबात प्रोग्राम विच अगे चल के पेश करांगे, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੰਨਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਿੱਖੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 8 ਵਜੇ ਰਾਤ ਜਲਾਲ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 9 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਨੂ ਜੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੌਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲਾਤ इस वेले ने। इस वेले 22 डिग्री सैलसीयस कैलगरी दे विच टैंपरेचर है। जे आने वाले दिनों दे विच गल करिए तां कल नूं भी 21 डिग्री होने की संभावना है। शुक्रवार नूं 20 डिग्री ते शुक्रवार शाम नूं हल्की फुल्की बारिश की संभावना है। ते 9 मई नूं दिन वेले 20 डिग्री सैलसीयस, बदलवाई जी रहेगी।

ये कर रहे हैं या स्केल बैक कर रहे हैं. सो यूएस मार्केट एक्सेस जापान की इन्वेस्टमेंट लिए बहुत जरूरी है. तो जे कनेडा विच गड्डियां बना के उन्होंने यूएसए विच नहीं बिकदियां जापानी ऑटोमेकर दियां तो वह कनेडा विच नहीं लाउणगे. तो दूसरा डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की गल है कि जे वह कनेडा विच गड्डी क्यों बनाउणगे जे वह बॉर्डर क्रॉस करन तो पहला उसनू वाहवा सारी ड्यूटी देनी पवेगी फिर इन्नी महंगी खरीदेगा कौन. मार्केट दे विच कंपैटिटिव रहन लई वह मजबूर हो रहे हैं कि कनेडा दे विच वह ज़्यादा मैनुफैक्चरिंग ना करन. जापान के राजदूत कैनेडा दे विच हैगे जिहड़े ने जी जापान के एंबैसडर ने कैनेडा दे विच यामानोकी कैंसी उन्होंने क्या कि यूएस मार्केट दे विच साडा एक्सेस बहुत जरूरी है तो कैनेडा यूएस मैक्सीको जिहड़ा एग्रीमेंट है वह जापानी इन्वेस्टमेंट जिहड़ी कैनेडा विच है उहदे लई बहुत अहमत है. भाव जिहड़ा कसम एग्रीमेंट जो हुण खटाई विच पैंदा नज़र आ रहा है कि जिस दे बारे ये शोर नहीं है कि वह नवा समझौता होगा या नहीं होगा. सो होंडा वालों ये प्लांट जिसनों दो साल लई अगे पा दिता गया तो बहुते महारता कह रहे हैं कि यह अद्धी छुट्टी सारी है इस विच कुछ होगा नहीं हुण. सो होंडा ने प्लैन हाल्ट कर दिती है तो प्राइम मिनिस्टर मार्क कारनी भी मन गए ने कि कैनेडा की ऑटो इंडस्ट्री नू बहुत सारिया मुश्किलों का सामना है. उन्होंने कमेंट इसे बयान तो इसे बयान के दरम्यान आए ने कि 15 बिलियन की इलैक्ट्रिक वहीकल प्लांट जो ओंटेरियो होंडा ने लाना सी वो कैंसल हो चुका है. सो आज की डेट के 2028 तक चलन वाला यह प्लांट होंडा ने कैंसल कर दिता है तो इस प्रोजेक्ट नू हॉल्ट कर दिता गया. ये कितना काम होया सी ते अनाउंसमेंट यदि अप्रैल 2024 दे विच हुई सी ते बहुत बड़ी खबर सी उदों भी कि होंडा वाले जिहड़े ने वो प्लांट ला रहे ने कनेडा दे विच इस तरह का प्लांट होगा. हुण मेलेनी जोली ते ये कह रहे हैं कि असी कॉन्टैक्ट दे विच हां होंडा दे नाल पर जापानी रिपोर्ट दे विच जो आया है उस मुताबक ये प्लांट इस नूं लाउणा ते चालू करना बहुत मुश्किल होगा. अमरीका दी टैरिफ नीति ते जिहड़ियां पॉलिसीज जिहड़ियां चेंज होईयां उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर दिता है. कनेडा का ऑटो सैक्टर बहुत स्ट्रगल कर रहा है तो कदों तक स्ट्रगल करता रहेगा ये अजे पता नहीं. तो इसका बहुता असर जिहड़ा है ओंटेरियो ते समेत पूरे कनेडा ते पैण की संभावना है. यूएसए दे विच इलैक्ट्रिक गड्डियां की डिमांड सुस्त हुई जिहड़ी है उहनूं एक कारण दस्सिया जा रहा है पर वड्डा कारण यह है कि जो अमेरिका दी नीतियां ने खास तौर पर जो ड्यूटीज वगैरह लग जांदियां ने उन्हां करके बहुत मुश्किल आ रही है. प्रोजेक्ट जदों ऐलान होया से उस तो बाद 2025 दे विच होंडा ने कहा सी कि थोड़ा जिहा डिले कर रहे हैं तो ईवी मार्केट स्लो होण नूं कारण दस्सिया सी पर हुण तो होर बहुत सारे कारण जिहड़े ने वो जुड़ गए हैं. सो होंडा दा इह प्रोजेक्ट जिस विच कहा जा रहा सी कि 1000 नौकरियां वो पैदा होणगियां नवीआं ते 4200 नौकरियां जिहड़ियां असैंबली प्लांट विच हैगियां ने वो एक्सट्रा वो जिहड़ियां ने वो भी रिटेन होणगियां पर वो भी जारी रहणगियां. सो ओरिजिनल जिहड़ी प्लैन सी इहदे विच 2028 विच जदों इस प्लांट ने पूरा काम करना सी इसने 2,40,000 गड्डियां एक साल दियां बनाउणियां सन. कैनेडा वाले उधर कुछ रख्या जिहड़े समान दे उपर शॉपिंग करदे फिरदे ने जी इन्हां विच कुछ जहाज़ां नूं खरीदण दी वी गलबात चल रही है. कैनेडा वाले हाइपरसोनिक जां क्रूज मिसाइल जिहड़ियां ओ आउंदियां ने उन्हां नूं रोकण लई जां ईसी जां स्पेस दे विच सारियां चीज़ां ते निगरानी रखण लई ते अपने आप नूं वधिया तरीके नाल इक्विप करना चाहते ने ते अपनी रक्षा करन लई गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा वाले फ्लाइंग रडार्स जिहड़ियां हैगियां ने जिन्हां नूं ऑफिशियली एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल AEW एंड सी एयरक्राफ्ट कहा जाता है उन्हां नूं रखण उन्हां नूं उन्हां दे घट्टो घट्ट 6

0: एक नहीं दो लवांगे, पहला अपने लई ते दूजा तेरे वीरे लई। मैं सुनिया जग्गी ढिल्लो पूरे प्रोफेशनल तरीके नाल समझांदे आ।
1: जी हाँ, मैक्सवेल सेंट्रल रियलिटी नाल काम कर दे, जग्गी ढिल्लो नाल एक बार जरूर गल बात करो। जग्गी ढिल्लो दा फोन नंबर है 403-616-2445 403-616-2445।
2: ओहो, आज फेर नहीं लोड मिलिया।
3: की होया?
2: बस पूछना, इंश्योरेंस कंफर्मेशन नहीं आई टाइम ते, ते हुन फेर एक दिन वेट करनी पैनी है, ते बच्चियां नू फेर नहीं मिल होना दो दिन।
3: ओहो, रह गए ना फेर पिछे। मैं सुनिया है सोनिक इंश्योरेंस दे मानस पहुजा अते रमन वड़ैच ते उना दी टीम इंश्योरेंस कंफर्मेशन बहुत जल्दी प्रोवाइड करवा दिंदी है, ते ओ ता पोर्टल भी सेट कर दिंदे ने ताकि तुसी आप ही कंफर्मेशन दे सको, बशर्ते तुहाडी इंश्योरेंस एक्टिव है। तुसी आज ही उना नू फोन करो ते जल्दी तो जल्दी गल करके कोई हल लभो, ताकि अगली बारी तुसी कार टाइम ते आ सको ते बच्चा नाल टाइम भी स्पेंड कर सको। फोन नंबर है मानस पहुजा 5878321208 या रमन वड़ैच 7807530001। सोनिक इंश्योरेंस।
4: हेलो गोपी, शुक्र है तू फोन चुक लिया। जिद्दण दा नवा घर लिया, सज्जन मित्र फोन चुकनो भी गए।
5: ओ सारे डरदे नहीं चकदे, उनां नूं लगदा तू मूविंग ली कहूंगा, कौन इन्ने भारे समान नूं हाथ पावे।
4: ओ नहीं भरावा, मैं इंज नहीं करदा। आपां ते हर वार स्टार मूविंग वालियां नूं इक फोन करीदा, ओ बहुत वधिया तरीके नाल सारे घर दा समान सही सलामत बिना किसी झंझट दे मूव कर जांदे आ।
6: अपने घर जां ऑफिस दा समान मूव कराउणा होवे तां स्टार मूविंग दे मलकीत सिंह जी नूं अज ही कॉल करो 4038701790 403-870-1790 स्टार मूविंग। नॉर्थ ईस्ट कैलगरी दे कैसल रिज एरिया दे विच है लॉट खरीदन दा शानदार मौका, जिथे बनाए जा सकदे ने 3 टाउन हाउस। एना ही नहीं, एना तिना दे नाल लीगल बेसमेंट स्वीट भी बनाईया जा सकदियां ने। बिल्डर्स ते इन्वेस्टर्स लई है शानदार मौका, फ्यूचर रेंटल इनकम लई है ए एक बहुत वधिया ऑप्शन। वधेरे जानकारी लई कॉल कर सकदे हो एमी नू 403-617-2111 ते, ते अमन गिल नू भी कॉल कर सकदे हो 403-479-7007 ते। बिल्डिंग परमिट पहला तो ही अप्रूव्ड है।
4: इस प्रोग्राम दे स्पॉन्सरां जी सोनिक इंश्योरेंस ते मानस पहुजा। मानस होरां दा दावा है कि अल्बर्टा विच ट्रकां दी इंश्योरेंस दे अगर वधिया रेट लैणे ने ते 587-832-1208 ते संपर्क कर लो 5878321208। ट्रकां दी इंश्योरेंस दे बेस्ट रेट देणगे सोनिक इंश्योरेंस दे मानस पहुजा। मर्सिडीज बेंज कंट्री हिल्स कैनेडा विच मर्सिडीज दी सब तो वड्डी डीलरशिप है। मर्सिडीज बेंज कंट्री हिल्स नॉर्थ ईस्ट कैलगरी दे विच है। ते इना कोलो अगर तुसी वधिया डील लैनी है ते गौरव शर्मा होरां नाल संपर्क कर लो। गौरव शर्मा होरां दा फोन नंबर है 403-903-6757 403-903-6757। पंजाब इंश्योरेंस तो हरपिंदर सिद्धू ते लवप्रीत सिद्धू भी प्रोग्राम दे स्पॉन्सर हन। सुपरविजर इंश्योरेंस ते लाइफ इंश्योरेंस दे स्पैशलिस्ट बहुत वधिया सेवावां दिंदे ने। भरोसेयोग सेवावां लई हरपिंदर सिद्धू ते लवप्रीत सिद्धू होरां दा फोन नंबर है 403-404-3500 403-404-3500 पंजाब इंश्योरेंस। वाई वाई सी होम केयर तो वीरपाल कौर होर की जी कंपनी है जी घर बजुर्गों की सामभ संभाल लई सेवावां दिंदी है। वाई वाई सी होम केयर तो तुसी अगर सेवावां लैणियां ने ते तुसी संपर्क कर लो वीरपाल कौर होर 825-760-0983 8257600983। वाई वाई सी होम केयर घर बजुर्गों की सामभ संभाल सरकार नूं बिल भेजा जाएगा। समोसा हाउस इंडियन रेस्टोरेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी दे विच एको एक रेस्टोरेंट जो 24 घंटे 7 दिन खुलता है ते नाल उन्हां वल्लों देसी घिओ विच दालां सब्जियां बनाईयां जांदियां ने। तुसीं ऑर्डर करो, जाके लै आओ जां बैठ के खाओ, बहुत वधिया सिटिंग है फैमिली दे नाल। समोसा हाउस इंडियन रेस्टोरेंट दा फोन नंबर है 403-400-6161 4034616161। पिक्सल फोटो स्टूडियो नॉर्थ ईस्ट कैलगरी के सवाना बाजार में पिक्सल फोटो स्टूडियो जिथों तुसी सिर्फ $7 में दो फोटो पासपोर्ट फोटो बना सकते हो। पिक्सल फोटो स्टूडियो सवाना बाजार फोन नंबर 403-947-0060 403-947-0060। पिक्सल फोटो स्टूडियो सवाना बाजार नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। आओ हुण प्रोग्राम दे इस हिस्से विच बाकी रहिंदियां खबरां ते चर्चा करदे हां जी। अल्बर्टा दे विच